है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर है नमस्कार और आदाब बरसों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-66-11। आज सोमवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को बस शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणी।

रेडियो SBS की जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो सियू का नाम हरिये हरन के आवास में ये सुंदर और सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन, आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। अभी अभी कुछ सुनने वालों स्टूडियो की ओर तार किया है गुड मॉर्निंग कहने के लिए, खुद मूर्ख कहने के लिए। आप सभी सुनने वालों को भी, सभी जो तार किया है आप सभी को भी अनहेल खुद मूर्ख गुड मॉर्निंग। और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जो है भजन यात्रा प्रोग्राम, जरूर सुनते ही रहना जो हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले अगला भजन विक्रम हसरा की आवाज में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

हसरा की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस बीच की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अगला भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है गोपाल जी की आवाज में, ये सुंदर सा भजन आज के प्रोग्राम में सुनते ही रहना।

और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी ये प्रोग्राम को सुनते हैं। तो चले अब की बार राकेश काला जी की आवाज में मिलकर ये सुंदर भजन को सुनते हैं जो काफी दिनों के बाद आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

मिला है कभी नहीं मिलेगा। सुंदर सा भजन अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले आपकी बार ये खास सुंदर भजन की ओर है।

बस पेश की गई है। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त प्रोग्राम भजन यात्रा को सुनते हैं, सभी को स्वागत किया जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हर सुबह ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

अभी आपने सुना आसरो मीठे सुंदर भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया है। भजन यात्रा का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, तो चले अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। उसके बाद आरती भजन पेश होगा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक सुंदर सा राम जी का भजन चले अरोड़ा की आवाज में बस पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा भजन अरोड़ा की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। चले प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले है, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते है, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन अलका जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। सुंदर सा शिव जी का आरती भजन आप सुनते ही रहें।

SBS के जरिए गाना पेश की गई कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में अभी आपने सुना। 8:00 प्रोग्राम में 11 मिनट वेटेड हो चुका है रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में आपकी बार अलका एंड कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

तू मेरी मैं तेरा। अलका एन कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गए। गीत फिल्म का नाम था आज की प्रोग्राम में जो पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में। घड़ी की ओर देखा जाए इस वक्त 11 मिनट बाकी है सुबह 8:30 बजे में रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। सोमवार का दिन 14 सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है लाइव शहर उत्तराखंड से। ये प्रोग्राम जो ब्रॉडकास्ट किया

रेडियो SBS के जरिए बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना बस पेश की गए गजनी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। तकरीबन 9 बजे से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगी, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सोमवार का दिन 14 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सभी को अन हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी जो स्टूडियो की ओर तार किया है और रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, सभी को वेलकम। कुमार सानू और अलकम द मूवी गुलाम, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

खूबसूरत सुहाना मौसम है, तो आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आज सोमवार 14 तारीख सितंबर का दिन जो है, मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। आप सुबह की वक्त काफी सुनने वालों बस स्टूडियो की ओर तार किया, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और आज जब भी गणेश चतुर्थी है, सभी को बधाइयां ही बधाइयां पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। तो चलिए यहां से पुरानी फिल्मी संगीतों का

पेश करने से पहले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की तरफ से। चले प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं किशोर कुमार की आवाज में बस पेश किया जा रहा है फिल्म जंगल में मंगल।

0: किशोर कुमार की आवाज में फिल्म जंगल में मंगल, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आज सोमवार का दिन है, गणेश चतुर्थी है, आप सभी को बधाइयां ही बधाइयां पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। मोहम्मद रफी,
1: लाल छड़ी मैदान खड़ी,
0: दमूफी जानवर, मोहम्मद रफी की

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म जानवर, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। धूप ही धूप का मौसम है और घड़ी की ओर देखा जाए 9:11 व्यतीत हो चुका है और हमारा प्रोग्राम मॉरिशस में इस वक्त दुशन जिंगरे भी सुनते हैं। आपको भी शुभ गणेश चतुर्थी बस पेश किया जा रहा है, बधाइयां ही बधाइयां आपको भी पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। चले प्रोग्राम में लता जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और मॉरिशस का रहने वाला दुशन जिंगरे ये गाना बस मांग किया है आज की प्रोग्राम में। लता जी की आवाज में फिल्म का नाम आई मिलन की बेला।

आई मिलन की बेला उसी फिल्म का गाना बस पेश की गई। मॉरिशस का रहने वाला दुष्यंत झिंगरे ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी एंड

0: मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। टक्कर फिल्म का नाम था, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तार की नंबर पर हमारा रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। आशा भोसले और महेंद्र कपूर प्रोग्राम में, फिल्म का नाम कसौटी।
1: मैं बेबी नहीं हूँ।
2: नो मोर बेबी।

कसौटी फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गए। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। ये प्रोग्राम हर सुबह आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में मिस्टर और मिसेस 55 उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है गीता दत्त एंड मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS. Het kabinet gaat de komende jaren ruim 17 miljoen euro extra uitgeven aan het bestrijden van natuurbranden. Het geld zou onder andere gaan naar een app van het KNMI die moet waarschuwen voor brandgevaar. Er zijn twee verdachten aangehouden in verband met het auto-ongeluk met een kind in Haarlem-Noord van gisteravond. Het Kennedy Center in Washington is volgens een bericht in de Washington Post bijna failliet. En de brandweer in Amsterdam heeft voor de tweede dag op rij een verwarde man uit het water moeten halen. Hij was gisteren om 18:00 aan het water trappen in het midden van de Sloterplas. Het weer in het binnenland is nog plaatselijk mist. Het wordt vanmiddag 22 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
1: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het drukste moment van de spits is voorbij. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam staat nog wel veel vertraging tussen Knopend Hoek en afrit IJmuiden. 4 kilometer file, de weg kan elk moment weer vrij zijn. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen de Brechtseplein en Moordrecht 6 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn door een ongeluk 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Den Haag over de A13 en de A12.
1: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। स्टूडियो के अंदर काफी तार अंदर आते हैं, रेडियो एसबीएस का ऐप पर जोर तोर से ऐप अंदर आते हैं। हॉलैंड देश से, देश विदेश से सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। और सभी को एक बार फिर से एक शुभ गणेश चतुर्थी बस पेश किया जा रहा है। सभी को बधाइयां ही बधाइयां पेश किया जा रहा है। और खासतौर पर इंडिया भारत देश नोएडा के रहने वाले अरुणेश और पूरा परिवार को भी एक शुभ गणेश चतुर्थी बस पेश किया जा रहा है। बधाइयां ही बधाइयां रेडियो एसबीएस का पूरा टीम के तरफ से बस पेश किया जा रहा है। और आप सभी के लिए ये सुंदर भजन आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। और खासतौर पर आज गणेश चतुर्थी है तो मैंने सोचा आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में एक भजन भी पेश हम करें आप सभी सुनने वालों के लिए। और खासतौर पर सुनने वालों जो इंडिया भारत देश नोएडा में भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए भी और सभी सुनने वालों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों के लिए बस पेश की गए। आज जबकि सोमवार है 14 तारीख सितंबर और गणेश चतुर्थी है, सभी को बधाइया ही बधाइया बस पेश की गए रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से। और खास तौर पर सभी को बधाइया ही बधाइया पेश किया जा रहा है जो हॉलैंड देश के बाहर देश विदेश में भी प्रोग्राम सुनते हैं। आज जबकि ये गणेश चतुर्थी है, इस वक्त घड़ी की ओर देखा जाए 9:30 वैदित हो चुका है। सुनने वालों एक खबर है, रविवार 15 तारीख नवंबर रोटरडम अहोई में RTM स्टेज में उदित नारायण और उनका बेटा आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं। रागा इवेंट्स ला रहा है और आपको मालूम होना चाहिए कि इन दिनों टिकट काफी जोर तोड़ से बिक रहा है और खानी सातोर ये खबर किया है कि चंद दिनों में काफी टिकट बिक चुका है और टिकट भी जोर तोड़ से बिक रहा है इस कॉन्सर्ट के लिए। उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट, बाप और बेटे का कमाल आप देखिए, गाने आप सुनिए। रविवार 15 तारीख नवंबर रोटरडम अहोई RTM स्टेज में अपना टिकट जो है i-tickets.com उसी वेबसाइट के जरिए जाकर आप खरीद सकते हैं और आप देखेंगे कि चंद दिनों में कितना टिकट बिक चुका है। सभी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है रागा इवेंट्स वेबसाइट पर। रागा इवेंट्स वेबसाइट पर आपको सभी और सभी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, इन्फो दिया जा रहा है। मिलकर देखेंगे रविवार 15 तारीख नवंबर रात्रि में 7 बजे से लाइव कॉन्सर्ट उदित नारायण और उनका बेटा आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट। खबर आप जरूर सुनते ही रहना रेडियो SBS के जरिए जो पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको खबर किया जा रहा है i-tickets.com उसी वेबसाइट पर जाकर अपना टिकट आप खरीदिए।

0: द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। और आपको मालूम होना चाहिए हॉलैंड देश का सबसे खूबसूरत शहर से ये आवाज निकलती है और वो भी शहर उत्तराखंड से। ये प्रोग्राम काफी सालों से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, 41 साल हो गए हैं, यानी कि यही नाम फिर तक यार रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और आज भी हजारों हजारों सुनने वालों दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, जिस तरह से डीमन शहर में मनोज हमारा प्रोग्राम को भी सुनते हैं। और मनोज एक गाना की गुजारिश किया है मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में।
1: तुम्हें पता चल गया
2: तिजोरी ऊपर है और आपसे पहले वहाँ मैं पहुँचूंगी।
3: अरे आप एक दूसरे को जानते हैं?
1: जी नहीं। जी हाँ, 3 दिन पहले मैं न्यूयॉर्क में इनको एक पार्टी में मिला था। बास साहब, इनका तो कोई जगह भी नहीं। वो कथकली के ठुमके लगाकर हिंदुस्तानी गाने गाकर अमेरिकनों को बेहोश करना इन्हीं का काम था।
2: अच्छा जी हाँ, लेकिन वो बेहोश मेरे गाने सुनते नहीं, इनके ताने सुनकर हुए थे। ये एक तान तोड़ते, दो चार इधर गिरते, दो चार उधर गिरते और आखिर में सब के सब बेहोश पड़े थे। तो हमें भी बेहोश कीजिए ना गाना गाके, प्लीज।
1: ठीक है, लेकिन एक शर्त है, इनको भी मेरा साथ देना होगा।
2: दूंगी, लेकिन मेरा साथ पाकर आप बहक गए तो? तो हो जाइए शुरू।
0: मुकेश और सुमन कल्याणपुर के आवाज में गाना आप सुनते ही रहना। डीमन शहर का रहने वाला मनोज ये गाना की गुजारिश किया है आज की पुरानी फिल्म संगीतों का प्रोग्राम में। डीमन शहर का रहने वाला मनोज ये गाना की गुजारिश किया है आज की पुरानी फिल्म संगीतों का प्रोग्राम में।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म चोरी चोरी उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। दीमन शहर का रहने वाला मनोज का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 10 मिनट बाकी है सुबह 10 बजे रे में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं किशोर कुमार एंड आशा। एक और खूबसूरत गाना किशोर एंड आशा जी की आवाज में

पुरानी फिल्म CID, उसी फिल्म का गाना बस पेश की गई आशा भोसले मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाज में, गाना भी आपने सुना। 10:00 प्रोग्राम में 7 मिनट वेटेड हो चुका है। चले प्रोग्राम में लता जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम 2 रास्ते। और रोटरडम शहर के अंदर में, रोटरडम शहर में खासतौर पर रिया हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और रिया ये गाना सुनना चाहते हैं लता जी की आवाज में, फिल्म 2 रास्ते।

रोटरडम शहर की रहने वाली रिया की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। लता जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। किशोर कुमार एंड लता।

लता जी की आवाज में फिल्म दूसरा आदमी उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-6611। इसी टारगी नंबर पर आप रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। स्टूडियो के अंदर बहुत से सुनने वालों बस ऐप कर रहे हैं। रेडियो SBS का ऐप पर काफी तार भी अंदर आते हैं, काफी सुनने वालों बस हमारा रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी तार कर रहे हैं। किशोर कुमार एंड लता एक बार फिर से प्रोग्राम में। मिस्टर नटवरलाल फिल्म का नाम, एक्टिंग सॉन्ग बाय द बिग बी अमिताभ बच्चन एंड रेखा।

किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 6 मिनट बाकी है प्रोग्राम में, सुबह साढ़े 10 बजे में रेडियो वेस्ट में इसके जरिए ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चले मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

सपनों का, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश किए गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सोमवार का दिन 14 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज गणेश चतुर्थी है, सभी को बधाइयां ही बधाइयां पेश किया जा रहा है। और सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है कि सोमवार 15 नवंबर उदित नारायण और आदित्य नारायण का कॉन्सर्ट पेश होने वाले है रोटरडम आहोई RTM स्टेज में। टिकट 3 दिनों काफी जोर तोड़ से बिक रहा है और वो भी वेबसाइट iStreamTicketsPoint.com।

वेबसाइट i-tickets.com और उसी वेबसाइट पर अपना टिकट जो है आप खरीदिए। इस वक्त हर एक प्राइस का टिकट आपको दिया जा रहा है और जब ये आप देर करेंगे तो जितनी सस्ती दामों वाला टिकट है सबके सब बिक जाएंगे। तो जल्द से जल्द अपना टिकट आप जाकर खरीदिए और सोंदा 15 नवंबर रोटरडम अहोई में उदित नारायण और आदित्य नारायण बाप और बेटे का कमाल आप देखिए। और जिस तरह से मैंने आज सुबह की ये वक्त में खबर किया कि और खानी सातोर जो है इस कॉन्सर्ट का ये खबर किया है कि चंद दिनों में ढेर सा टिकट बिक चुका है। बस टिकट इन दिनों काफी जोर तोड़ से बिक रहा है। अपना टिकट जरूर आप जल्द से जल्द जाकर खरीदिए। एक बार फिर से वेबसाइट i-tickets.com और ये कॉन्सर्ट ला रहा है रागा इवेंट्स। वेबसाइट पर आप जाकर सभी इंफॉर्मेशंस आप ले सकते हैं और मिलकर देखेंगे रविवार 15 तारीख नवंबर रोटरडम अहोई RTM स्टेज में उदित नारायण एंड आदित्य नारायण का कॉन्सर्ट। मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म का गीत पेश की गए मुकेश और लता जी की आवाज में। ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हमारा प्रोग्राम अमित सिद्धत भी सुनते हैं, ऐप द्वारा भी रिएक्शंस दिया है, शुक्रिया धन्यवाद। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गाना जो अब की बार पेश होगा लता मंगेशकर और चितलकर की आवाज में, फिल्म का नाम अलबेला, 1953 का फिल्म, लता

गाना पेश की गए सई रामचंद्र के संगीत पर। ये गाना भी आपने सुना फिल्म निराला। फिल्म निराला 1950 का फिल्म है, उसी फिल्म का ये गाना बस पेश की गए। मोहम्मद रफी एनाशा आपकी बार। आपका चेहरा माशाल्लाह, और फिल्म का नाम है रूठा ना करो। 1970 का फिल्म, 1974 तक का फिल्म है। और इस फिल्म में भी, इस गाना पर भी सई रामचंद्र अपना संगीत सजाया है। आपका चेहरा माशाल्लाह, जुल्फों के चेहरा सुभान अल्लाह। मोहम्मद रफी एनाशा।

रेडियो SBS के जरिए मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में गाना पेश की गए रूठा ना करो फिल्म का नाम आपका चेहरा माशाल्लाह। सुनने वालों आहिस्ता आहिस्ता पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जो है खत्म होने पर आ रहा है। चले फिल्म सरस्वती चंद्रा की ओर। मुकेश और लता होगा प्रोग्राम में। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं ये मेरा दिल है। मुकेश एंड लता।

की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गए। सुनने वालों चले प्रोग्राम में पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्रोग्राम हर सुबह बस पेश किया जा रहा है, जिसमें पुरानी से पुरानी फिल्मी गाने पेश किया जा रहा है। और आप घर पर या नौकरी पर गर्मा गर्म कॉफी चाय लेकर के इस प्रोग्राम को सुनते हैं। आपको मालूम होना चाहिए डीएब प्लस रेडियो के जरिए ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है। हॉलैंड के बीच में मिड नीदरलैंड में दूर दूर शहरों में अपना मोटर कार में अपना घरों में ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी मोटर कार में और अपना घरों में ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। रोटरडम देना सुतमेर स्कीडाम जितनी शहर होते हैं प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में, वहां पर हमारा प्रोग्राम डीएबी प्लस रेडियो के जरिए आप सुन सकते हैं। राजन गिरधारी उत्तराखंड लाइटसराइन गिरधारी स्रात का रहने वाला राजन गिरधारी भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं। और इस वक्त गार्डन में अपना टाउन में ओवर डेक्ट टाउन में बैठे हुए हैं और अपना रेडियो हाई वॉल्यूम के साथ ऑन किया है ताकि पड़ोसी लोग भी सुने। हाँ, पड़ोसी लोग भी सुने रेडियो SBS का प्रोग्राम। तो राजन गिरधारी एक गाना मांग किया है और आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम का एक आखिरी गाना होगा मोहम्मद रफी की आवाज में। और अपना पड़ोसी के लिए भी ये गाना पेश कर रहे हैं। कहते हैं राजन गिरधारी, अकेले है चले आओ, आखिरी गाना आज की ये पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में स्पेशल राजन गिरधारी ने मांग किया है।

बरसात की ये प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण एनएल की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, शादी से पहले, फिल्म का नाम, एक फिल्म जो 2006 में रिलीज किया गया है।

आवाज में फिल्म का नाम शादी से पहले, शादी से पहले फिल्म का नाम, और उसी फिल्म से ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

Ukraine. Na čem ja vam sme jegana ački program bi piski ga intere bina. Radio SBS ka program piski aja raha hai. Website radiosbs.nl. Kumar Sanu en Sunidhi Chauhan program mein aapki baar. आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है कुमार सानू और सुनिधि चौहान की आवाज में।

चौहान की आवाज में ये गाना पेश की गई शब्द फिल्म का नाम और उसी फिल्म से ये गाना भी आपने सुना। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। कुणाल गांजावाला एंड सुनिधि चौहान, शकलाका बूम बूम फिल्म का नाम।

कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना बसुरगाम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। आज के प्रोग्राम में जरूर और जरूर सुनते ही रहना हासिल उम्मीद है गाना आप सभी सुनेंगे और बेहद पसंद करेंगे। जावेद अली और साथियों की आवाज में ये गाना

पेश की गए जावेद अली और इंदु पांडे की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। शौर्य फिल्म का नाम अब की बार अदनान सामियन सुनिधि चौहान की आवाज में आज की प्रोग्राम में ये गाना पेश किया।

सौरिया गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए। आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते हैं राइट नाम रेडियो SBS का जो पेश किया जा रहा है संगीत भरी स्टेशन हॉलैंडी से यूट्रेख्ट शहर से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। शिखर फिल्म का नाम 2004 में ये फिल्म रिलीज किया गया है। एक गाना उसी फिल्म का उदित नारायण एंड अलका जी की आवाज में

उदित नारायण और अलका की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। ऐलान फिल्म का नाम होगा आपकी बार के और सुनिधि चौहान की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है।

अब इस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में इस वक्त सवा बारह का वक्त क्वाटो फर्तवाल स्टूडियो टाइट हो चुका है। दोपहर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, इश्क है बेकरार, सुनते ही रहना रेडियो एसबीएस की जरिए।

इश्क है बेकरार, करता है वो इंतजार। ब्लाइफ्टन हेलो मूवी नंबर। आज के प्रोग्राम में बस भी इश्क के आसरो भी थे, आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सिर्फ मिनटों फॉर हेलोवीन स्टूडियो टाइट हो चुका है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और बहुत सी सुनने वालों बस इस वक्त रेडियो एस बी एस का प्रोग्राम को सुनते हैं। शान प्रोग्राम में होगा, शान की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, जरूर आप सुनते ही रहना।

रेडियो SBS की सर ये गाना शान की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई, आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में राहत फतेह अली खान और श्रेया जी के आवाज में फिल्म बॉडीगार्ड का गीत पेश किया जा रहा है।

की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश हुआ है। चलिए फिल्म दोन दो की ओर एक गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है,

रेडियो वेस्ट इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था डोन डू, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई।

गुलशन की आवाज में ये गाना पेश की गई है, हमें तुमसे प्यार कितना। श्रेया जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए कुमार सानू जी की ओर, कुमार सानू की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

था पोटवल की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर 03-25-65-65-60 है। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं और सभी कामों काज के लिए हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। कुमार सानू और

गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए हसरो मीठे किए गाना आप सभी ने सुना उन्हें बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए पेश की गए कैलाश घेर की आवाज में ये खूबसूरत गाना। तो चलिए अब की बार फिल्म लावारिस की ओर। एक फिल्म जो नई 1900

वे टू सी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में एक बार फिर से उदित नारायण।

अभी गीत और कविता कृष्णमूर्ति के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले एक बड़ी ही खूबसूरत गाना की ओर, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। फिल्म का नाम

प्यार किसी से होता है, लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

हूँ मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। कुछ पुरानी नगमे आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और हमारे बहुत से सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम भी सुनते हैं रेडियो SBS का। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना फिल्म जानवर से बस पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले किशोर कुमार एन आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म जवानी दीवानी की ओर। द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार और द रॉकेरो क्वीन द नाइटिंगेल ऑफ एशिया आशा भोसले।

एडवांस में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम जवानी दीवानी है। चले प्रोग्राम में अब की बार मरहूम मोहम्मद रफी के एडवांस में ये गाना पेश किया जा रहा है।

शुरू मोहम्मद रफी की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में किशोर और उषा खन्ना की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम जॉनी।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, खास तौर पर किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। किशोर कुमार एन लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। सुनवालो रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.com.au, उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड या कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई, काफी प्यार भरी गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए फिल्म जुगनू, उसी फिल्म का एक गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, सॉन्ग बाय द मैन विद ग्रीन वॉइस, एक बार फिर से किशोर कुमार प्रोग्राम में।

जनाब उस प्रोग्राम भी पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना गाना जो आपकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है किशोर और लता जी की आवाज में और फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। उसी फिल्म से आपकी बार ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी। किशोर और लता जी की आवाज में ये काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश और आरती मुखर्जी प्रोग्राम में होगा।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सिनेमाओं की सेवा में आरती मुखर्जी और मुकेश जी की आवाज में गाना भी आपने सुना। पुरानी फिल्म अनारी की ओर हम आपको ले चलते हैं एक बार फिर से मुकेश की आवाज में।

इस प्रोग्राम में पेशती गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना खासतौर पर स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा मीठे प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशुली रामलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिट इज यू आर जे अंशुली रामलाल दू फा हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्रामा गीतों के लहर। विल तो रिएगेरे कान इट अल्टाइड, सर्फ मा नार द वेबसाइट www.radiosbs.nl ऑफ बेल गेरुस्ट मेट द स्टूडियो नार 032-62-6611. Voor alle andere info kunt u bellen met 032-65-65-60. En beginnen we meteen met het eerste liedje van vandaag en dat is...

इधर चला मैं उधर चला। आपने सुना फिल्म कोई मिल गया से, और अब सुनिए फिल्म मिलन तौकी से नेहा करोरे की आवाज में शर्त।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं।
2: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

फिल्म अमर प्रेम से आपने सुना आर डी बर्मन और लता मंगेशकर की आवाज़ में। रहना बीत जाए शाम न आए। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है पलक मुच्छल की आवाज़ में। रजदान है गाने के बोल और फिल्म का नाम है बदनाम।

मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। आपने सुना हाफ गर्लफ्रेंड से? ये एक फिल्म है अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर का। तो अब हम चलते हैं अगले गाने की ओर। रेडियो SBS FM के जरिए से आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म वो कौन थी से। लग जा गले कि फिर से ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो।

तलत अजीज की आवाज में आपने सुना डैडी से सपनों के घर के। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, जुबेन नौटियाल की आवाज में, फिल्म सनक से आप सुनिए, सुना है तेरे दिल पे मेरे, लिखा है कहीं नाम है मेरा।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, इसका सॉन्ग दो जगजीत सिंह एंड कवाम आई द फिल्म प्रेम गीत एंड गजोंग दो किशोर कुमार एंड आनंद कुमार कॉम्प्ट प्यार लो प्यार लो।

चढ़ाते रंग आपने सुना फिल्म यमला पगला दीवाना से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है कोई मिल गया से, ऋतिक रोशन का फिल्म है। गाने के बोल है इट्स मैजिक आई हैव गॉट द वाइब दैट यू नीड।

बाकी सब फर्स्ट क्लास है। आपने सुना अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में फिल्म कलंक से, और अब आप सुनिए फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। उदित नारायण और अलका याचने की आवाज में आप सुनिए चांद छुपा बादल में।

तो है फिल्म का नाम, और अब आप सुनिए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से, अर्जुन, सुखविंदर सिंह और पैरी की आवाज में, हाउस पार्टी सॉन्ग।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.